की नारत है तुझसे कभी कोई दुनिया। खुश नसीब है हम जो तुमने हमें है अपनाया। बांटेंगे हम इस मोहब्बत के चिराग को जो तुमने है जलाया।

भगवान, दिस भजन आई वॉन्ट टू प्रेजेंट टू यू. रिसेंटली आई हैव डन सम वर्क विथ उस्ताद अमजद अली खान साहब एंड ही हैज कंपोज्ड दिस भजन. इट्स अ सूफी पोएट्री. देर इज अ सूफी स्कॉलर इन दिल्ली हु टीचेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही हैज रिटन द लिरिक्स द वर्ड्स ऑफ दिस भजन. I hope you'd like my offering.